आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एड्रेस एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग एट पार्लियामेंट हाउस दिस मॉर्निंग। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू होल्ड टॉक्स विद अ नॉर्थ मैसिडोनियन काउंटर पार्ट इन स्कोपिये टुडे। Four Indians killed and one critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. US launches